0: उसके बाद पता ही नहीं था कि किसका कैसे गया, लेकिन जब बाद में फिर एग्जाम देने के बाद जब बाहर आए उसके बाद तो पता लगा कि हाँ एग्जाम हार्ड था, तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिला।
1: तो आप लोग तीनों से फाइनल कमेंट्स लेते हैं। कृति आप शुरू करिए। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट डिमांड, आई मीन परहैप्स द बिगेस्ट डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। देर आर अदर डिमांड्स व्हिच इंक्लूड्स आल्सो कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, हु डाइड बाय सुइसाइड। आई हैव बीन स्पीकिंग टू देयर पेरेंट्स, दे ऑफ कोर्स से दैट दिस इज, आई मीन दिस विल नॉट रियली नथिंग कॉम्पेंसेट्स देयर लॉस। बट कृति, what will fix a failed system that we have seen, an education system which needs a complete rehaul, overhaul?
2: Meaningful reforms and greater accountability, restoring, this will restore the confidence of the students, I'll say.
1: Okay, this will restore the confidence of the students. What are your thoughts, Ananya? Go ahead.
3: Ma'am, honestly, first of all, I would like to take this platform. Our new education minister had just joined the cabinet. I would love to take this platform to put forward my point of reservation. I am totally against reservation. I want to put forward a few viewpoints and I would like to take this platform for it. So I believe that an education system should be transparent, fair and truly merit-based in the very true sense. Every student should get equal opportunities and ranks and seats in colleges should be secured through ability and hard work rather than reservations. So I hope that our new education minister employs policies that increasingly strive to reward merit while ensuring that support for disadvantaged categories is delivered in ways that expand opportunities without compromising future in competitive examinations. And that is one of my demands. And now to answer your question, I feel that ultimately my position is not rooted in political allegiance, but in principle. So I would like to conclude by saying that whatever a leader does, others follow, and whatever standards they set become standards of the society.
1: Okay, so spoken like as Gen Z, Ananya. Every platform has to be used to the maximum. That's what we saw. All of you use Instagram very, very aggressively and very creatively. Vidhi Singh, please come in. There's a problem with your network, Vidhi. You keep going and you keep coming. Please go ahead.
4: Ma'am, am I audible?
1: Yes, please. Go ahead. Loud and clear. Make your point.
4: Ma'am, I would like to say ki ma'am, abhi jo nahi education policies aayengi ya phir whosoever will be the person who will take the responsibility of being the education minister, as ma'am, Miss Ananya said, she's against reservation. This is ma'am, my same concern, only because reservation can only ensure free and just exams. Because of reservation, thousands of people lack seats. And mostly we are one of them. So to ensure free and fair examinations and to get seats in the good colleges, firstly, reservation should be removed. And after that, a certain level of accountability should be there. We should get a certain specific format of the question paper, when government or when that specific association or that specific institution publish its sample question paper. Then after that, when we see the original question paper, both the things are very different, because of which we do not get the pattern ki exams kaise aane wale hain hamare ya phir how the question paper will be presented to us. So for me, the new education system should remove the reservation and the seat allotment and colleges must be based on the merits, not on the basis of the reservation. And secondly, we should get more accountability regarding the pattern of the question and regarding the topics which will be asked to us.
1: Okay, we certainly hope that the education ministry is watching the demands of the protesting students and the students in general, their concerns. That has to be addressed at some level. So, Suman, let me give you the last word on the show. Do you think that this movement should end now and this movement should not turn political?
0: I think the movement had started now. नाउ वी कैन द लाइक वी कैन द कॉन्फिडेंट कि अगर हम आगे कुछ ऐसा होता है तो हम अपनी बात रख पाएंगे और गवर्नमेंट उसके ऊपर अकाउंटेबल भी होगी. और नॉट जस्ट एजुकेशन और बाकी सारे जो इतने फ्रॉड चलते हैं हर मतलब हर एक फील्ड में, जैसे कि हम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल दो वी आर डेवलपिंग कंट्री, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल नाउ. सो इट्स जस्ट स्टार्टिंग लाइक मतलब एज वी सी दैट पीपल से दैट Gen Z कांट डू एनीथिंग, दे आर जस्ट ऑन द सोशल मीडिया. सो आई थिंक दिस प्रोटेस्ट शो दैट नॉट Gen Z आर इन रियल एंड लाइक दे कैन डू दे कैन मेक गवर्नमेंट व्हाट दे व्हाट इज रियल और दे कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन रियल और रियल. सो वी डिड, सो वी आर हैप्पी मैम की, और इसके बारे में मैं कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये हुआ और आगे भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर कैसा कुछ हुआ तो हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में.
1: ओके,
0: गवर्नमेंट विल देखो.
1: Gen Z is appearing all confident after the resignation today and the protests having been called off. Kriti Shree, Vidhi Singh, Ananya Sharma and Suman Meena, wishing you all the best for future. Thank you for joining us.
4: Thank you. Thank you so much.
1: Earlier today, I spoke to Rajesh Maul, who in fact lost his daughter, Riya Thapa, a NEET aspirant. Listening to what he told me about his thoughts after the resignation of the education minister. Rajesh Maul, who is a Kargil war veteran, is joining us. His daughter, Riya Kumari, was 23 years old and a NEET aspirant who died by suicide on 16th June 2026. Rajesh Maul ji, is resignation ke baad aap kya bolenge?
5: जी मैम, मैं आज खुश हूँ. ये जो आज इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, शायद ये अगर पहले शुरू में जिम्मेवारी लेके देते तो इतना बड़ा कुछ होता नहीं. आज बच्चे शायद समझ जाते पहले ही शायद, और मेरी बच्ची भी क्या पता होती आज. तो ये उन बच्चों को ये जीत है आज, और ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए सरकार को. ऐसा कुछ होता है तो उसमें कोई वो नहीं है. मैं तो आज कोई और कुछ भी हुआ इसे खबर आई जी.
1: जून के महीने में आपने अपनी बेटी को खोया
5: जी.
1: उसके बाद आपने देखा कि लगभग एक महीने में ये प्रोटेस्ट काफी बढ़ गया. स्टूडेंट्स का ये डिमांड हमेशा रहा कि जिन बच्चों की डेथ हुई है नीट पेपर लीक की वजह से, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए. आप कॉम्पनसेशन के बारे में क्या बोलेंगे?
5: जी मैम, आप कॉम्पनसेशन ऐसा है जैसे अब हम क्या करेंगे हम, है ना. लेकिन मेरे को तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर मैं तो खुद ही मैं बोलता हूँ कि मैं देता हूँ 1 करोड़ रुपए, मेरी बेटी वापस दे दो तो आने से रही. लेकिन यह है कि बाकी बेटियों के लिए, बाकी बच्चों के लिए बचाव होना चाहिए. उनके बचाव के लिए जैसे अच्छी नीति बनाए, ऐसा ना हो बार बार लीक जो हो रहे हैं पेपर, बहुत पहले से हो रहे हैं, इससे बच्चों की जान बची रहे और शिक्षा प्रणाली थोड़ा सरल बनाया जाए. ये जो परीक्षा है, परीक्षा में जैसे चर्चा बोलते हैं तो उसको अच्छी तरह से क्या है उसमें, कैसे सुझाव, अच्छे सुझाव लेके उस पर अच्छा कार्य करे सरकार. मेरी यही गुजारिश है कि आने वाले समय में कोई बच्ची या कोई भी छात्र इस वजह से सुसाइड ना करे, क्योंकि जो दुख मैं झेल रहा हूँ वो मुझे पता है. तो मेरी यही है कि इसको कॉम्पनसेशन तो कोई बड़ी बात है नहीं. देखो हाँ, जिनको जो बेचारे जरूरत है, जिन्होंने कर्ज वर्ज लिया उनको देना चाहे उनको दे दें, हमें तो कोई ऐसा उसकी वो नहीं है नहीं. वैसे मुझे
1: शिक्षा प्रणाली को पूरा फिक्स करने की जरूरत है. आपकी बेटी की जब डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने क्या बताया था नीट और रीनीट के बारे में आपको? वो कितनी परेशान हो गई थी रीनीट के वजह से?
5: जी मैम, एक्चुअली वो मैम उसने इस बार जो है पूरी बहुत मेहनत की थी. उसने सुबह से शाम तक पढ़ती रहती थी, शाम को 6 बजे के बाद वो खाना नहीं खाती थी कि नींद आती है बोल के हल्का खाना फ्रूट जूस वगैरह पी के सोती थी. 2 से 3 बजे तक, रात 4 बजे तक भी पढ़ती थी वो. मतलब बहुत ज्यादा उसे वो था। और 3 मई को पेपर हुआ, वो आए, हमने तो कुछ पूछा नहीं उससे, वो आई, खुश थी वो, और उसने खाना वाना खाया, ऑनलाइन कुछ मंगाया उसने, आया और जाके रिलैक्स हो गई, ऐसे हो गई, फ्री हो गई जैसे। उसने बोला कि आज हल्का हो गया, मैंने, हमने कुछ बोला नहीं। अगले दिन मैंने पूछा कि ठीक हुआ पेपर, अच्छा हुआ? बोला हाँ अच्छा हुआ। मैंने बोला इसका मतलब ईजी था क्या पेपर? बोला ना ना, ईजी थोड़ा होता है नीट का पेपर पापा, बहुत हार्ड बनाते हैं ये लोग, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है तेरे, ठीक हाँ मेरा अच्छा गया। बोला उसके बाद तो फिर जब कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर जैसे आया तो उसने मेरे को ये बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे अफवाह होगा। मैंने बोला, तो बोला नहीं नहीं लीक हो गया पापा, पहले भी हुआ था अब फिर हो गया, अब ये हमारे लिए तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। बोला मैंने बोला यार मत मत ले टेंशन, अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, क्या पता अभी देख नहीं हुआ होगा, लेकिन लीक हो गया था। तो उसके बाद वो एनटीए पे उसने बहुत सवाल किए मेरे से कि ये एनटीए बनाया किसने, जब ये हमें इतनी स्ट्रिक्ट प्रतिबंध हमारे ऊपर है जब हम पेपर देने जाते हैं कि 2 मिनट, क्योंकि पिछली बार हम भी थोड़े से लेट हो गए थे, जब एक बार पिछली बार इसने दिया था तो उस समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी वो, लेकिन हम पहुंच गए थे टाइम में, और उसके बाद कान से भी उतरवा दिया थे उसके बुंदे, और ये हाथ में जो जैसे कलावा वगैरह पहनते हैं ये भी निकलवा देते, क्लिप वगैरह कुछ नहीं, चप्पल में जाना है। तो मतलब बोलती थी कि हम लोगों के लिए इतना स्ट्रिक्ट है और लेकिन ये लीक कैसे हो जाता है, ये इससे तो हमारे तक कट ऑफ ही नहीं आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, पता नहीं किस किस के पास ये पेपर पहुंच जाते होंगे। तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है 720 में, 720 तो आजकल तो इतने बच्चों के आ रहे, पहले ऐसा होता नहीं था। ये सारी चीजें वो बताती थी कि ये एनटीए जो है ये सही नहीं है, सीधा सीधा उसने यही बोला था मेरे को कि पापा ये एनटीए ठीक नहीं है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो खैर मेरे को भी इतना नॉलेज तो था नहीं इसके विषय में, मैंने बोला चलो ज्यादा मत सोचो। फिर उधर जी मैम
1: मायूसी उस बच्ची की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे लगभग 20 से ऊपर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इसी मायूसी में क्योंकि पेपर लीक हुआ। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जिसने बच्चों को इतना बेबस बनाया है, आपको लगता है ये प्रोटेस्ट और वो सब के बाद वो एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो पाएगा?
5: जी मैम ये शुरुआत है। देखिए आपने अभी देखा होगा कि सारे बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया, तो अभी ये समझना चाहिए सरकार को कि बच्चों को के ऊपर एक वो बोझ सा बन गया ये शिक्षा प्रणाली, उससे बच्चे परेशान हैं, तो उसको सुधारने के लिए इनको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूँ मैं तो अब मेरी बेटी तो आएगी नहीं वापस, लेकिन जो हमारे देश के बच्चे हैं भविष्य हैं उनके लिए ऐसा सरल तरीके से मतलब बनाए इसे, जैसे कोई भी संस्था जो पहले भी चलाती होंगी शायद, इतना पहले सुना नहीं हमने कि आत्महत्या किया या ऐसा किया, आज आजकल ही सुनने में आ रहा है ज्यादा। तो इसमें बहुत ज्यादा सलाह लेकर सरकार को हर
6: A good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game, from all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
7: My question is, this is fundamental. This is a bill that will fundamentally alter the map of the country. When you are doing serious bills of this nature, you need the widest possible consultation with all stakeholders so that in an ideal world there is consensus.

जीते नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला फीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी हो।

0: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
1: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
0: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
1: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
0: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको, वो ऑटो पायलट। अरे बाबा, उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
1: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
0: देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी कहाँ है रे बाबा?
2: सर ये इरा

0: वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं।
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा, इंजन बंद कर दे इसका, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं यार बाबा।
0: लेकिन सर ये हॉर्मोन्स खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले, ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल,
0: और तीसरे पाइप से।
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
0: अरे गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा है बाबा, क्या मस्त जोक मारा आपने।
0: अरे कौन है? हेलो, क्या आप नोबल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों, एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।

0: Hello and welcome to the latest edition of It's Gone Viral. In the next half an hour, we will be showing some of the images and videos that have gone viral last week and created some buzz.
1: ज़्यादा हाई सैलरी भी एक ट्रैप है. देखिए, इंडिया में जैसे ही आपकी इनकम 2 लाख पर मंथ तक आ जाए तो आप मोटा मोटी डिसेंट लाइफस्टाइल काट सकते हो इंडिया में. उसके बाद अगर आप जितना करियर करियर करियर चेस करोगे तो इनफाइनाइट रैट रेस है. ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है.
2: An MBA graduate has sparked debate online after explaining why earning a very high salary can sometimes become a trap.
1: क्योंकि उनको करियर में ऊपर जाना है, उनसे आप कम्पीट नहीं कर पाओगे. आप इसीलिए एक लेवल पे जाके जहाँ आपका लाइफस्टाइल मीट हो रहा है वहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद अपने हेल्थ पे फोकस करो.
2: His take on promotions, financial commitments and work-life balance has resonated with professionals, reigniting conversation about what success truly means.
1: 10-15 साल बाद मेरे पास हो, इसके लिए मुझे किसी कंपनी में जॉब नहीं करना पड़े जो इंडिपेंडेंटली पैसा जनरेट कर सकते हैं. जैसे कंटेंट क्रिएशन एक नॉन एम्प्लॉयबल स्किल है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप बस अवेयर नहीं हो.
2: A Russian woman living in Mohali has shared her experience of navigating her first pregnancy in India. From adapting the climate and language barrier to embracing cultural differences, her honest reflections have struck a chord with viewers across social media.

0: तुम्हें पता है अब्रॉड की सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारा कंफर्ट जोन। क्योंकि भाई जब ये बच्चे अब्रॉड इंडिया से अब्रॉड आते हैं ना, इंडिया से नहीं चाहे कहीं से भी आ रहे हैं।
1: An Indian US based in US has gone viral after urging students studying abroad not to let survival jobs become permanent comfort zones।
0: ये मैनेज हो जाती है उनकी, और जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है तो वो उसी जॉब को फुल टाइम।
1: सच अबाउट स्टेइंग फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म करियर गोल्स हैज रेजोनेटेड विद थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
0: बढ़िया चल रही है वहीं पे। भाई ऐसा नहीं करना है, अपनी बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब ढूंढो, अप्लाई करते रहो, और जो सही उनकी फील्ड वाली नौकरी है उसके लिए अप्लाई करते रहो, लगे रहो, मिल जाएगा, हो जाएगा।
2: मेरे पास पैसा नहीं पड़ा और तो लगा दी, बोला मैं दी।
1: A Delhi Uber driver has inspired the internet after revealing that despite earning 80,000 rupees a month in rental income, he continues to work following a heart attack. His story of resilience, purpose and determination has touched thousands online.
2: जिसने भी property लिया वो बीवी को नाम,
3: अरे भाई साहब
2: अपने नाम से नहीं
3: लिया।
2: जो भी property है, मेरे पास दो लड़की है, लड़का नहीं है, मैं वो भी चाहत नहीं रखता हूँ, कल मैं नहीं कमाऊँ तो मेरा आराम से जिंदगी, दोनों प्रॉपर्टी बेचूंगा, लड़की का शादी कर
4: दूंगा। सो दिस मैन ओवर देयर यू कैन सी ही इज अ आर्मी गाय, ओके, ही आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम। मैंने उसे सिर्फ ये पूछा कि ईवी स्टेशन कहाँ
1: है। एन इंडियन आर्मी जवान हैज वन हार्ट्स आफ्टर हेल्पिंग अ स्ट्रैंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर हुज बैटरी रन आउट मिड जर्नी। द सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्विकली वेंट वायरल with social media users praising the soldier's willingness to step in and help.
4: This is Indian Army. This man has stood with me for half an hour till I charged my car, and now he is actually dropping me all the way out.
5: Today, I will get 5 minutes.

0: Flipkart delivery executive has won hearts after calling a customer instead of ringing doorbell to avoid disturbing the household. Shared by a Bengaluru mother, the thoughtful gesture has gone viral, with viewers praising the delivery partner's kindness and consideration.
1: But mortals too find the waters of Bombay irresistible. And no wonder, for Bombay has some of the finest beaches in India.
0: A vintage glimpse of Mumbai's Juhu Beach has gone viral, showing its clear shoreline, golden sand and calm waves nearly 50 years ago. The nostalgic images have sparked conversations about rapid urbanization, pollution and the importance of preserving the city's iconic coastline for future generations.
1: Murmuring of the palms, blue skies and the friendly people of Bombay.
2: मेरे पेरेंट्स बोलते थे हम पढ़ने के लिए नदियां तैर के जाते थे. मैं भी अपने बच्चों को बोलूंगी हम अमेरिका में पानी पीने के लिए ना हर तीन दिन में $3.50 खर्च करके इतनी दूर से हैवी बोतल उठा के लाते थे.
0: An Indian woman living in the US has gone viral after sharing the realities of life abroad.
2: और जो लोग अब्रॉड आने के सपने देखते हैं ना, स्पेशली लड़कियों, कमर कस के आना, इंडिया का प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला यहाँ पे.
0: स्पेशली फॉर वुमेन फ्रॉम पेइंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू कैरिंग हैवी बॉटल्स होम, शी अर्जिंग माय migrants not to expect the comfort and convenience many are accustomed to in India.
2: मैं भी अपने बच्चों को बोलूंगी हम अमेरिका में पानी पीने के लिए ना हर तीन दिन में $3.50 खर्च करके इतनी दूर से हैवी बोतल उठा के लाते थे.
3: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
0: A flight full of Argentina fans erupted in celebration after a flight announced their team had won the 2026 FIFA World Cup final. But the excitement quickly turned into stunned silence when passengers realized the announcement was nothing more than a prank.

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं
या बावड़ी की जिम्मेदारी ले, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इससे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे
सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगु क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगु के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगु देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगु भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत कारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं।
आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
5: Hello, Ted.
4: Your cat seems thirstier.
6: Whoa, slow down, buddy.
4: Or your puppy is acting clumsier. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
5: Veg ER for pets. This is Kate.
4: Veg. The better, kinder ER for pets.

सल्यूट। दोस्तों सीटे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला सीपा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी।

जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बच्चों के पेपर सेल होने लग गए थे, लीक कर दिए जाते थे, पेपर बेच दिए जाते थे, और उसके खिलाफ देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पे आए। और आज मैं समझता हूं हमारे लाखों बच्चों की जीत हुई है और देश का अहंकारी राजे का अहंकार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। आज के बाद यही बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही देश का युवा जब किसी भी स्टेट की इलेक्शन आए या नेशनल इलेक्शन आए, तब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी देंगे वोट की जरिए।

सल्यूट। दोस्तों टीके नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला टीपा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी।

0: The first Indian to win the World Junior Squash Championships, defeating Egypt's Rukaya Salem 3-0 in the girls' singles final in Canada. Prime Minister Modi calls it a historic moment. Well, we're beginning the bulletin with our focus on this given event where the Prime Minister Modi interacted with participants of the Viksit Vibrant Village program via video conferencing. The Viksit Vibrant Village program has been conceptualized to realize Prime Minister's vision of treating India's border villages as the first villages of the nation and making them active partners in the journey towards Viksit Bharat. Viksit Vibrant Village Programme 2026 was organized in two phases from June 4th to June 30th, 2026, covering as many as 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Over 400 youth participants representing every state and union territory were selected through a nationwide online quiz competition that witnessed participation from more than 3 lakh youth. Listen in to this very interaction.
1: मैं समस्त माय भारत वॉलंटियर्स की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है उसे पूर्ण करने में हम जेंजी तत्पर रहेंगे क्योंकि जेंजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग जेंजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग जेंजी का मतलब है सेवा का पर्याय जेंजी का मतलब है इनोवेशन अर्थात जेंजी है नेशन फर्स्ट
2: केम जो
3: સર બહુ જ મજામાં તમે કેમ છો
2: આપણે એવા ને એવા
3: સર મેં આપકે સમક્ષ વિકસિત વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ મેં જો અનુભવ સાજા કિયે વો આપકે સમક્ષ ઓર મેરે સાથીઓ કે સમક્ષ રખના ચાહુંગી કે સર સચ કહું તો મેને કભી સોચા નહીં થા કે ચારોર સમંદર સે ગિરે દીવ સે મેં એક દિન ભારત કે દૂસરે કોને મેં બસે હિમાચલ પ્રદેશ પર્વતો કે બીચ મેં किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती गांव चांगो विलेज में जाऊं।
2: निकिता जी आपको संभवतः पता होगा कि हर दिवाली में अपने फौजी भाइयों से मिलने मैं बॉर्डर पर जाता हूं। ये संयोग है कि साल 2016 में मैं दिवाली पर बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था। निकिता आप चांगो के जिन गांवों में गई क्या वहां महिला प्रधानों या जन प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला
3: हाँ सर मिला ना हमें सर मैं जब चांगो धार का भ्रमण कर रही थी गांव का तो वहां की प्रधान वहां पंचायत के प्रतिनिधि महिलाओं किसानों बुजुर्गों और बच्चों से सर मैं मिली उनसे बातचीत की और जब मैंने महिला प्रधान से सर बातचीत की तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है कि खेती भी संभाल लेती है वहां पे जॉब भी कर लेती है और उससे सर मुझे एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है और सर उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं ये थी सर हम दूसरे दिन गए बच्चों के साथ खेल कूद करने के लिए सर हम वॉलीबॉल खेल रहे थे और वहाँ के बच्चों के साथ मिलके सर जो हमने नारे लगाए हैं सर आप सुनिए जरा वो नारे ये थे सर हम शिव शक्ति हैशा हम युवा शक्ति हैशा हम जीतने वाले हैशा हम आदि शक्ति हैशा सर ये सुन के तो पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे लग रहा था सर कि जैसे मैं हमारे आज के जो हमारे मीराबाई का जो प्रोग्राम होने वाला है एथलेटिक्स में मैं सोच रही हूँ सर कि यही नारे मैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए घर बैठे बैठे लगाऊं
2: देखिए हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना और उस काम के साथ गीत भी बना देना जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता रही है उस सामूहिकता से शक्ति आती थी और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था अच्छा निकिता जी आजकल सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है सोलो ट्रैवलिंग इज अ वे ऑफ डिस्कवरिंग द वर्ल्ड व्हाइल डिस्कवरिंग योरसेल्फ एक तरीके से आप लोग भी

टीके नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला टीका भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार

जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं, हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट

आने वाली। और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार

0: come from a lab. Gums from my roots, from centuries of wisdom, and from nature's lab. This is Hexa Organics, honest herbal heritage.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

सल्यूट। दोस्तों सीटे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला फीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार

जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बच्चों के पेपर सेल होने लग गए थे, लीक कर दिए जाते थे, पेपर बेच दिए जाते थे, और उसके खिलाफ देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पे आए। और आज मैं समझता हूं हमारे लाखों बच्चों की जीत हुई है और देश का अहंकारी राजे का अहंकार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। आज के बाद यही बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही देश का जुबा, जब किसी भी स्टेट की इलेक्शन आए या नेशनल इलेक्शन आए, तब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी देंगे वोट की जरिए।

0: The resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the NEET paper leak controversy has only intensified the political heat in Punjab. The opposition is demanding accountability from the Bhagwan Mann government, with calls for the resignation of Education Minister Harjot Singh Bains and Health Minister Balbir Singh over alleged paper leaks and examination irregularities. In fact, the BJP, Congress and Shiromani Akali Dal have all stepped up the attack, accusing the Aam Aadmi Party government of failing to protect the very integrity of examinations. The BJP has also targeted the CJP founder, Abhijit Deepke, asking him to stand with Punjab students after he condemned the paper leak but stopped short of demanding resignations. Earlier, when questioned about the Punjab paper leak, CJP founder Abhijit Deepke condemned the irregularities but remained silent when asked whether he would demand the resignation of Punjab's Aam Aadmi Party ministers. However, Punjab Chief Minister Bhagwan Mann has rejected the allegations of paper leaks, insisting that there has been no paper leak in the state. In fact, Punjab Education Minister Harjot Bains also defended himself, saying action had been taken against those caught cheating and even offered to resign if it could improve the education system.
1: Now they are saying that achha, Punjab mein bhi ek paper leak hua hai. First thing, pharmacy paper leak was not a paper leak, it was cheating. जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनको मौके पर पकड़ लिए हैं. दूसरा ही है कि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट. थर्ड चीज ये है जी कि पूरे देश के विचों बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया. आई एम वाज द ओनली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर हु वेंट देयर. मैं स्टेज से नहीं गया, मैं बच्चों के विच रह के सारा दिन है ना. शाम को जो बच्चे वायलेंस रिजॉर्ट करने लगे, उन्होंने कहा नहीं अपने दोस्तों को कि आप इस मूवमेंट को खत्म नहीं करना, आप इस मूवमेंट को जीना है. तो दो तीन दिन पहला मैंने पूछा, मैं हमेशा कहा कि अगर मेरे रेजिग्नेशन नाल एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है एनी टाइम है ना, आई स्टिल स्टैंड ऑन माई वर्ड्स.
2: साढ़े चार साल हो गए सरकार बनी, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया. पंजाब दे विच दो जगह तो सानू चीटिंग दी रिपोर्ट आई सी, डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नू स्कैन करके बाहर भेज रहे सी. 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करदे सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वह भी फड़े, उन्हां ते कारवाई पुलिस की हुई. तो जिहड़े बाहरों उन्हां नू पेपर करवाउंदे सी, जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, जिहड़े 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया लेंदे सीगे एक पेपर का, उन्हां नू भी फड़िया ते फड़ के उन्हां नू जेल च कीता. 21 बंदे टोटल फड़े ने ते फड़ के जेल च कीते. मैं ये गल कहनी चाहूँगा, पंजाब दे विच नो कैश नो फरमैश ओनली मैरिट, सिर्फ मैरिट के आधार पर असीं नौकरियां भी मैरिट के आधार पर दिंदे आ.
3: आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया होण या अरविंद केजरीवाल, अनक्राउंड किंग ऑफ पंजाब, जिन्हां ने फार्मेसी का पेपर लीक कराने के बावजूद हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं मंगया, जदों कि मनीष सिसोदिया जी कहिंदे सी साडे पेपर लीक हो ते पहला मंत्री का इस्तीफा लवांगे. हुण जदों कल भी और परसों भी अभिजीत दीपिके नूं पुछा गया, उन्होंने मीडिया के अंदर जवाब दिंदिआं कहा कि पंजाब के मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए. यही असली चेहरा आया आम आदमी पार्टी की बेईमान लुटेरियां की पार्टी का. अज जदों अपनी बारी आई है हरजोत बैंस के इस्तीफा लैण की, तो बिल्ला च जाके लुक गए ने.
4: बेहद खुशी की गल है कि हिंदुस्तान के नौजवानों की अज पहली वड्डी जित हुई है. हुण पंजाब की भी यही लड़ाई है. 4 साल च 4 पेपर लीक और पंजाब दे नौजवान और पंजाब दे लोग इस गुंगी बैरी सरकार तो जवाब मांगदे है. और जिम्मेदार भगवंत मान ते एजुकेशन मिनिस्टर है, और सानू हुण ये लड़ाई लड़के पंजाब दे अंदर भी एजुकेशन मिनिस्टर दा इस्तीफा लेना चाहिदा है.
5: आखिरकार देर आए दुरुस्त आए ते सिक्ख्या मंत्री ने अपना अहुदा छड्ड दिता. पर हुण सवाल यह खड़ा हुंदा है कि जिहड़े पंजाब दे साडे लीडर ने, चाहे भगवंत मान ने, चाहे आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, यह दिल्ली दे धरने नूं तां इन्हां ने पूर्ण समर्थन दिता. तो मैं अज पुछना चाहुंदा कि पंजाब दे अंदर 2022 तो पिछले 4 साल च 6 पेपर लीक होए ने, जिहदे नाल 5 लाख विद्यार्थी पंजाब दा अफेक्टेड है, ते की अज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ते भगवंत मान पंजाब के सिक्ख्या मंत्री तो इस्तीफा लेंगे?
6: पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे?
7: उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए.
6: आम आदमी पार्टी का लीडर अभिजीत, आम आदमी पार्टी का लीडर

0: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Hello and welcome to the latest edition of It's Gone Viral. In the next half an hour, we will be showing some of the images and videos that have gone viral last week and created some buzz.
2: ज़्यादा हाई सैलरी भी एक ट्रैप है. देखिए, इंडिया में जैसे ही आपकी इनकम 2 लाख पर मंथ तक आ जाए तो आप मोटा मोटी डिसेंट लाइफस्टाइल काट सकते हो इंडिया में. उसके बाद अगर आप जितना करियर करियर करियर चेस करोगे तो इनफाइनाइट रैट रेस है. ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है.
3: An MBA graduate has sparked debate online after explaining why earning a very high salary can sometimes become a trap.
2: क्योंकि उनको करियर में ऊपर जाना है, उनसे आप कम्पीट नहीं कर पाओगे. आप इसीलिए एक लेवल पे जाके जहाँ आपका लाइफस्टाइल मीट हो रहा है वहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद अपने हेल्थ पे फोकस करो.
3: His take on promotions, financial commitments and work-life balance has resonated with professionals, reigniting conversation about what success truly means.
2: 10-15 साल बाद मेरे पास हो, इसके लिए मुझे किसी कंपनी में जॉब नहीं करना पड़े जो इंडिपेंडेंटली पैसा जनरेट कर सकते हैं. जैसे कंटेंट क्रिएशन एक नॉन एम्प्लॉयबल स्किल है, ऐसे बहुत सारे हैं. आप बस अवेयर नहीं हो.
3: A Russian woman living in Mohali has shared her experience of navigating her first pregnancy in India. From adapting the climate and language barrier to embracing cultural differences, her honest reflections have struck a chord with viewers across social media.

0: तुम्हें पता है अब्रॉड की सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारा कंफर्ट जोन। क्योंकि भाई जब ये बच्चे अब्रॉड इंडिया से अब्रॉड आते हैं ना, इंडिया से नहीं चाहे कहीं से भी आ रहे हैं।
1: An Indian US based in US has gone viral after urging students studying abroad not to let survival jobs become permanent comfort zones.
0: ये मैनेज हो जाती है उनकी, और जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है तो वो उसी जॉब को फुल टाइम बना लेते हैं, वही छोटी मोटी जॉब जो वो कर रहे होते हैं उसको फुल टाइम।
1: A message about staying focused on long term career goals has resonated with thousands of aspiring international students.
0: बढ़िया चल रही है वहीं पे। भाई ऐसा नहीं करना है, अपनी बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब ढूंढो, अप्लाई करते रहो, और जो सही उनकी फील्ड वाली नौकरी है उसके लिए अप्लाई करते रहो, लगे रहो, मिल जाएगा, हो जाएगा।
2: मेरे पास पैसा नहीं पड़ा अब तो लगा दी, बोला मैं दी।
1: A Delhi Uber driver has inspired the internet after revealing that despite earning 80,000 rupees a month in rental income, he continues to work following a heart attack. His story of resilience, purpose and determination has touched thousands online.
2: अभी जितना भी property लिया वो बीवी को नाम,
3: अरे भाई साहब
2: अपने नाम से नहीं
3: लिया,
2: जो भी property है मेरे पास, दो लड़की है, लड़का नहीं है, मैं वो भी चाहत नहीं रखता हूँ, कल मैं नहीं कमाऊँ मेरा आराम से जिंदगी, दोनों प्रॉपर्टी बेचूंगा, लड़की का शादी कर दूंगा।
4: सो दिस मैन ओवर देयर यू कैन सी ही इज अ आर्मी गाय, ओके, ही आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम, मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि ईवी स्टेशन कहां
1: है। एन इंडियन आर्मी जवान हैज वन हार्ट्स आफ्टर हेल्पिंग अ स्ट्रैंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर हुज बैटरी रन आउट मिड जर्नी। द सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्विकली वेंट वायरल विद सोशल मीडिया यूजर्स प्रेजिंग द सोल्जर्स विलिंगनेस टू स्टेप इन एंड हेल्प।
4: This is Indian Army. This man has stood with me for half an hour till I charged my car, and now he is actually dropping me all the way out.
1: A Russian traveler has gone viral after trying a traditional face massage at a men's saloon in Delhi for just $1. And that is 96 rupees. Curious to experience local life, she expected an impromptu invitation to the salon. While she enjoyed the service, the video also sparked concern online, with many urging her to stay cautious while traveling alone. A man's surprise for his elderly father has melted hearts online after she took him on his first ever Vande Bharat journey. Recalling how his father once walked to the work daily just to save 5 rupees on a rickshaw. The emotional ride became a touching tribute to years of sacrifice.
5: आईफल टॉवर का टूर तो आपने कभी नहीं लिया होगा, तो बस फिर आप लोगों को सैर कराने के लिए आपकी बाजी पहुंच गई मोहब्बत के शहर पेरिस।
1: An Indian content creator has sparked a social media debate after sharing the reality of visiting the Eiffel Tower beyond the perfect travel photos.
5: इतनी गर्मी में लाइनों में लगना वैसे ही इतना मुश्किल है, तो ये देखें जरा आईफल टॉवर पगलू पैदल ही जा रहे हैं ऊपर।
1: Her candid observations about the iconic landmark have divided viewers over whether expectations truly match the experience.
5: कुत्तों के भी सिविक सेंस उठाते हैं, मतलब कि पेरिस इतना शॉकिंग है कि सोच।

0: Flipkart delivery executive has won hearts after calling a customer instead of ringing doorbell to avoid disturbing the household. Shared by a Bengaluru mother, the thoughtful gesture has gone viral, with viewers praising the delivery partner's kindness and consideration.
1: But mortals too find the waters of Bombay irresistible. And no wonder, for Bombay has some of the finest beaches in India.
0: A vintage glimpse of Mumbai's Juhu Beach has gone viral, showing its clear shoreline, golden sand and calm waves nearly 50 years ago. The nostalgic images have sparked conversations about rapid urbanization, pollution and the importance of preserving the city's iconic coastline for future generations.
1: Murmuring of the palms, blue skies and the friendly people of Bombay.
2: मेरे पेरेंट्स बोलते थे हम पढ़ने के लिए नदियां तैर के जाते थे. मैं भी अपने बच्चों को बोलूंगी, हम अमेरिका में पानी पीने के लिए ना हर तीन दिन में $3.50 खर्च करके इतनी दूर से हैवी बोतल उठा के लाते थे.
0: An Indian woman living in the US has gone viral after sharing the realities of life abroad.
2: और जो लोग अब्रॉड आने के सपने देखते हैं ना, स्पेशली लड़कियों, कमर कस के आना, इंडिया का प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला यहाँ पे.
0: स्पेशली फॉर वुमेन फ्रॉम पेइंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू कैरिंग heavy bottles home. She urged urging migrants not to expect the comfort and convenience many are accustomed to in India.
2: मैं भी अपने बच्चों को बोलूंगी, हम अमेरिका में पानी पीने के लिए ना हर तीन दिन में $3.50 खर्च करके इतनी दूर से heavy bottle उठा के लाते थे.
3: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
0: A flight full of Argentina fans erupted in celebration after a flight announced their team had won the 2026 FIFA World Cup final. But the excitement quickly turned into stunned silence when passengers realized the announcement was nothing more than a prank.

0: पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ, बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। छात्र नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगी उस सुनने में?
1: ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर, ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी,

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has put out another video message as part of his outreach to the Gen Z. In his message, for the third time, the Prime Minister has said that strict action is being taken against those involved in exam irregularities, with fast-track courts already in place and a new anti-paper leak bill set to be introduced in the Lok Sabha tomorrow. Now, saying that the government's focus is now on long-term structural reforms, it's Prime Minister who has announced the formation of a high-powered task force on examination reforms. The task force will be led by Infosys co-founder and technological expert Nandan Nilekani and will recommend long-term reforms aimed at strengthening the credibility of future examinations through greater use of technology. Nandan Nilekani is best known as the architect of India's Aadhaar biometric ID system and a key force behind India's stack, which powers digital services such as UPI, eKYC and DigiLocker. A long-time advisor to the government on digital transformation, it's Nilekani who will now submit recommendations aimed at restoring confidence in the examination system.
2: Friends, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: Yes, so who is Nandan Nilekani? For the benefit of this generation, the Gen Z, he is the founder of the UIADI, which is the Unique Identification Authority of India. He was responsible for the entire rollout of Aadhaar, which is the biometrics. I'm sure all of you have the Aadhaar card. He co-founded Infosys, one of the most renowned technology companies that India tom-toms about. He is a very respectable big name in the technology domain. For the Prime Minister to say that he will be the one heading the task force, it's a message that it doesn't really stop at the resignation of Dharmendra Pradhan. Before the resignation, the fast-track courts had been set up. And after the resignation, tomorrow in Parliament, there will be a crucial legislation which will be coming up, which will be essentially amending the 2024 Unfair Means in Examination Act. This will ensure that the entire examination system, the government is hoping, will be more leak-proof, because there'll be more deterrent. There'll be tougher punishments in terms of the amendments that the government is planning to bring in that bill, which will be tabled in the Lok Sabha tomorrow. But keeping in continuation with the series of measures which are being taken, there is also going to be a task force which will be set up, which will bring the technology aspect of it. Because deterrence perhaps is not strong enough, because the larger challenge is implementation of a tough law. What is needed is to ensure that there is technology support which is given to an examination such as NEET, in which almost 22 lakh students take a NEET paper examination. Can it be more driven by technology? That is the focus now of the government. That's why this task force under Nandan Nilekani, perhaps the most respectable face in the technology space, with Mr. Nilekani himself heading this task force.
1: The resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the neat paper leak controversy has only intensified the political heat in Punjab. The opposition is demanding accountability from the Bhagwan Mann government, with calls for the resignation of Education Minister Harjot Singh Bains and Health Minister Balbir Singh over alleged paper leaks and examination irregularities. In fact, the BJP, Congress and Shiromani Akali Dal have all stepped up the attack, accusing the Aam Aadmi Party government of failing to protect the very integrity of examinations. The BJP has also targeted the CJP founder, Abhijit Deepke, asking him to stand with Punjab students after he condemned the paper leak but stopped short of demanding resignations. Earlier, when questioned about the Punjab paper leak, CJP founder Abhijit Deepke condemned the irregularities but remained silent when asked whether he would demand the resignation of Punjab's Aam Aadmi Party ministers. However, Punjab Chief Minister Bhagwan Mann has rejected the allegations of paper leaks, insisting that there has been no paper leak in the state. In fact, Punjab Education Minister Harjot Bains also defended himself, saying action had been taken against those caught cheating and even offered to resign if it could improve the education system.
4: Now they are saying that achha, Punjab mein bhi ek paper leak hua hai. First thing, pharmacy paper leak was not a paper leak, it was cheating. जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे थे उनको मौके पर पकड़ लिए. दूसरा ही है कि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट. थर्ड चीज ये है जी कि पूरे देश के विचों बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया. आई एम वाज द ओनली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर हु वेंट देयर. मैं स्टेज से नहीं गया, मैं बच्चों के विच रह के सारा दिन है ना. शाम को जो बच्चे वायलेंस रिजॉर्ट करने लगे उन्होंने कहा नहीं अपने दोस्तों कि आप इस मूवमेंट को खत्म नहीं करना, आप इस मूवमेंट को जीना है. तो दो तीन दिन पहला मैंने पूछा, मैं हमेशा कहा कि अगर अगर मेरे रेजिग्नेशन नाल एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है एनी टाइम है ना. आई आई स्टिल स्टैंड ऑन माय वर्ड्स.
5: साढ़े चार साल हो गए सरकार बनी नू, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच. दो जगह तो सानू चीटिंग की रिपोर्ट आई सी, डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नू स्कैन करके बाहर भेज रहे सी. दस मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करदे सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वह भी फड़े, उन्हां ते कार्रवाई पुलिस की हुई. तो जिहड़े बाहरों उन्हां नू पेपर कराउंदे सी, जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, जिहड़े तीन तीन लख चार चार लख पाँच पाँच लख रुपया लेंदे सीगे एक पेपर का, उन्होंने भी फड़िया, फट के उन्होंने जेल च किया. 21 बंदे टोटल फड़े ने ते फड़ के जेल च किए. मैं गल कहनी चाहूँगा, पंजाब दे विच नो कैश नो फरमैश ओनली मैरिट. सिर्फ मैरिट के आधार पर असं नौकरियां भी मैरिट के आधार पर दें.
6: आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, अनक्राउंड किंग ऑफ पंजाब, जिन्होंने फार्मेसी का पेपर लीक कराने के बावजूद हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं मंगया, जदों कि मनीष सिसोदिया जी कहिंदे सी साडे पेपर लीक हो तो पहला मंत्री का इस्तीफा लवेंगे. हुण जदों कल भी और परसों भी अभिजीत दीपिके नूं पुछा गया, उन्होंने मीडिया के अंदर जवाब दिंदिआं कहा कि पंजाब के मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए. यही असली चेहरा आया आम आदमी पार्टी की बेईमान लुटेरिया की पार्टी का. अज जदों अपनी बारी आई है हरजोत बैंस के इस्तीफा लैण की, तो बिल्ला च जाके लुक गए ने.
7: बेहद खुशी की गल है कि हिंदुस्तान के नौजवान

जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बच्चों के पेपर सेल होने लग गए थे, लीक कर दिए जाते थे, पेपर बेच दिए जाते थे और उसके खिलाफ देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पे आए और आज मैं समझता हूं हमारे लाखों बच्चों की जीत हुई है और देश का अहंकारी राजे का अहंकार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। आज के बाद यही बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही देश का जुबा जब किसी भी स्टेट की इलेक्शन आए या नेशनल इलेक्शन आए तब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी देंगे वोट की जरिए।

सल्यूट। दोस्तों सीटे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला स्टीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा,

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has put out another video message as part of his outreach to the Gen Z. In his message, for the third time, the Prime Minister has said that strict action is being taken against those involved in exam irregularities, with fast-track courts already in place and a new anti-paper leak bill set to be introduced in the Lok Sabha tomorrow. Now, saying that the government's focus is now on long-term structural reforms, it's Prime Minister who has announced the formation of a high-powered task force on examination reforms. The task force will be led by Infosys co-founder and technological expert Nandan Nilekani and will recommend long-term reforms aimed at strengthening the credibility of future examinations through greater use of technology. Nandan Nilekani is best known as the architect of India's Aadhaar biometric ID system and a key force behind India's stack, which powers digital services such as UPI, eKYC and DigiLocker. A long-time advisor to the government on digital transformation, it's Nilekani who will now submit recommendations aimed at restoring confidence in the examination system.
2: Friends, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: Yes, so who is Nandan Nilekani? For the benefit of this generation, the Gen Z, he is the founder of the UIADI, which is the Unique Identification Authority of India. He was responsible for the entire rollout of Aadhaar, which is the biometrics. I'm sure all of you have the Aadhaar card. He co-founded Infosys, one of the most renowned technology companies that India tom-toms about. He is a very respectable big name in the technology domain. For the Prime Minister to say that he will be the one heading the task force, it's a message that it doesn't really stop at the resignation of Dharmendra Pradhan. Before the resignation, the fast-track courts had been set up. And after the resignation, tomorrow in Parliament, there will be a crucial legislation which will be coming up, which will be essentially amending the 2024 Unfair Means in Examination Act. This will ensure that the entire examination system, the government is hoping, will be more leak-proof, because there'll be more deterrent. There'll be tougher punishments in terms of the amendments that the government is planning to bring in that bill, which will be tabled in the Lok Sabha tomorrow. But keeping in continuation with the series of measures which are being taken, there is also going to be a task force which will be set up, which will bring the technology aspect of it. Because deterrence perhaps is not strong enough, because the larger challenge is implementation of a tough law. What is needed is to ensure that there is technology support which is given to an examination such as NEET, in which almost 22 lakh students take a NEET paper examination. Can it be more driven by technology? That is the focus now of the government. That's why this task force under Nandan Nilekani, perhaps the most respectable face in the technology space, with Mr. Nilekani himself heading this task force.
1: The resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the NEET paper leak controversy has only intensified the political heat in Punjab. The opposition is demanding accountability from the Bhagwan Mann government, with calls for the resignation of Education Minister Harjot Singh Bains and Health Minister Balbir Singh over alleged paper leaks and examination irregularities. In fact, the BJP, Congress and Shiromani Akali Dal have all stepped up the attack, accusing the Aam Aadmi Party government of failing to protect the very integrity of examinations. The BJP has also targeted the CJP founder, Abhijit Deepke, asking him to stand with Punjab students after he condemned the paper leak but stopped short of demanding resignations. Earlier, when questioned about the Punjab paper leak, CJP founder Abhijit Deepke condemned the irregularities but remained silent when asked whether he would demand the resignation of Punjab's Aam Aadmi Party ministers. However, Punjab Chief Minister Bhagwan Mann has rejected the allegations of paper leaks, insisting that there has been no paper leak in the state. In fact, Punjab Education Minister Harjot Bains also defended himself, saying action had been taken against those caught cheating and even offered to resign if it could improve the education system.
4: Now they are saying that achha, Punjab mein bhi ek paper leak hua hai. First thing, pharmacy paper leak was not a paper leak, it was cheating. जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनको मौके पर पकड़ लिया है. दूसरा ये है कि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट. थर्ड चीज ये है जी कि पूरे देश के विचों बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया. आई एम वाज द ओनली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर हु वेंट देयर. मैं स्टेज से नहीं गया, मैं बच्चों के विच रह के सारा दिन है ना. तो शाम जो बच्चे वायलेंस रिजॉर्ट करने लगे उन्होंने कहा नहीं अपने दोस्तों कि आप इस मूवमेंट खत्म नहीं करना, आप इस मूवमेंट जीना है. तो दो तीन दिन पहला मैंने पूछा, मैं हमेशा कहा कि अगर अगर मेरे रेजिग्नेशन नाल एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है एनी टाइम है ना. आई आई स्टिल स्टैंड ऑन माई वर्ड्स.
5: साढ़े चार साल हो गए सरकार बनी नू, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच. दो जगह तो सानू चीटिंग दी रिपोर्ट आई सी, डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नू स्कैन करके बाहर भेज रहे सी. 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करदे सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वह भी फड़े, उन्होंने कार्रवाई पुलिस की हुई. तो जिहड़े बाहरों उन्होंने पेपर करवाउंदे सी जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, जिहड़े 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया लेंदे सीगे एक पेपर का, उन्होंने भी फड़िया तो फड़ के उन्होंने जेल च किया. 21 बंदे टोटल फड़े ने तो फड़ के जेल च किए. मैं ये गल कहनी चाहूँगा, पंजाब दे विच नो कैश नो फरमैश ओनली मैरिट, सिर्फ मैरिट के आधार पर असं नौकरियां भी मैरिट के आधार पर दें.
6: आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, अनक्राउंड किंग ऑफ पंजाब, जिन्होंने फार्मेसी का पेपर लीक कराने के बावजूद हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं मंगया, जदों कि मनीष सिसोदिया जी कहते साढ़े पेपर लीक होते पहला मंत्री का इस्तीफा लवेंगे. हुण जदों कल भी और परसों भी अभिजीत दीपिके नूं पुछा गया, उन्होंने मीडिया के अंदर जवाब दिंदिया कहा कि पंजाब के मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए. यही असली चेहरा आया आम आदमी पार्टी की बेईमान लुटेरिया की पार्टी का. अज जदों अपनी बारी आई है हरजोत बैंस ने इस्तीफा लैण की, तो बिल्ला च जाके लुक गए ने.
7: बेहद खुशी की गल है कि हिंदुस्तान के नौजवानों की अज पहली वड्डी जित हुई है. हुण पंजाब की भी यही लड़ाई है, 4 साल च 4 पेपर लीक, और पंजाब दे नौजवान और पंजाब दे लोग इस गुंगी बैरी सरकार तो जवाब मांगते हैं, और जिम्मेदार भगवंत मान ते एजुकेशन मिनिस्टर है, और सानू हुण ये लड़ाई लड़के पंजाब दे अंदर भी एजुकेशन मिनिस्टर दा इस्तीफा लेना चाहिए.
8: आखिरकार देर आए दुरुस्त आए ते सिक्ख्या मंत्री ने अपना अहुदा छड्ड दित्ता. पर हुण सवाल यह खड़ा हुंदा है कि जिहड़े पंजाब दे साडे लीडर ने, चाहे भगवंत मान ने, चाहे आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, यह दिल्ली दे धरने नूं तां इन्हां ने पूर्ण समर्थन दिता. तां मैं अज पुछना चाहुंदा कि पंजाब दे अंदर 2022 तों पिछले 4 साल च 6 पेपर लीक होए ने, जिहदे नाल 5 लाख विद्यार्थी पंजाब दा अफेक्टेड है, ते की अज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ते भगवंत मान पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री तो इस्तीफा लैणगे?
9: पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे?

0: पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। छात्र नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगी उस सुनने में?
1: ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर, ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी,

0: बहुत से विषय ऐसे होते हैं उसका सुखद अंत हो, किसी भी रूप में हो। अब उसमें कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन युवाओं की जो एक महत्ता है वो हम सबको ध्यान रखनी होती है कि युवा समाज में किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत विषय गलत संदेश न जाए। आखिर आज का युवक अपने देश का निर्माता है और उनमें किसी प्रकार की कोई धारणा बनी है वो ठीक है कि गलत है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके आगे उनकी बातचीत को ध्यान में रखते हुए अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस प्रकार का काम किया तो मैं उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने मौके को भांप करके और इन सारी बातों को ठीक रखने के लिए ये सब किया है।
1: रिजिग्नेशन करना उनका व्यक्तिगत सिद्धांत है, लेकिन मैंने ट्वीट भी किया हूं। असम के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें काफी मदद किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अभी अभी असम में हमने किया, प्रधान जी ने ही करके दिए है। और NEP इम्प्लीमेंटेशन में उनका जो एक बड़ा भूमिके थे, तो उसके लिए मेरा यही मानना है कि इतिहास धर्मेंद्र प्रधान जी को जरूर पॉजिटिवली ही असेस करेगा।

0: are watching India Today.
1: Prime Minister Modi has put out another video message as part of his outreach to the Gen Z. In his message, for the third time, the Prime Minister has said that strict action is being taken against those involved in exam irregularities, with fast-track courts already in place and a new anti-paper leak bill set to be introduced in the Lok Sabha tomorrow. Now, saying that the government's focus is now on long-term structural reforms, it's Prime Minister who has announced the formation of a high-powered task force on examination reforms. The task force will be led by Infosys co-founder and technological expert Nandan Nilekani and will recommend long-term reforms aimed at strengthening the credibility of future examinations through greater use of technology. Nandan Nilekani is best known as the architect of India's Aadhaar biometric ID system and a key force behind India's stack, which powers digital services such as UPI, eKYC and DigiLocker. A long-time advisor to the government on digital transformation, it's Nilekani who will now submit recommendations aimed at restoring confidence in the examination system.
2: Friends, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: Yes, so who is Nandan Nilekani? For the benefit of this generation, the Gen Z, he is the founder of the UIADI, which is the Unique Identification Authority of India. He was responsible for the entire rollout of Aadhaar, which is the biometrics. I'm sure all of you have the Aadhaar card. He co-founded Infosys, one of the most renowned technology companies that India tom-toms about. He is a very respectable big name in the technology domain. For the Prime Minister to say that he will be the one heading the task force, it's a message that it doesn't really stop at the resignation of Dharmendra Pradhan. Before the resignation, the fast-track courts had been set up. And after the resignation, tomorrow in Parliament, there will be a crucial legislation which will be coming up, which will be essentially amending the 2024 Unfair Means in Examination Act. This will ensure that the entire examination system, the government is hoping, will be more leak-proof, because there'll be more deterrent. There'll be tougher punishments in terms of the amendments that the government is planning to bring in that bill, which will be tabled in the Lok Sabha tomorrow. But keeping in continuation with the series of measures which are being taken, there is also going to be a task force which will be set up, which will bring the technology aspect of it. Because deterrence perhaps is not strong enough, because the larger challenge is implementation of a tough law. What is needed is to ensure that there is technology support which is given to an examination such as NEET, in which almost 22 lakh students take a NEET paper examination. Can it be more driven by technology? That is the focus now of the government. That's why this task force under Nandan Nilekani, perhaps the most respectable face in the technology space, with Mr. Nilekani himself heading this task force.
1: The resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan over the NEET paper leak controversy has only intensified the political heat in Punjab. The opposition is demanding accountability from the Bhagwan Mann government, with calls for the resignation of Education Minister Harjot Singh Bains and Health Minister Balbir Singh over alleged paper leaks and examination irregularities. In fact, the BJP, Congress and Shiromani Akali Dal have all stepped up the attack, accusing the Aam Aadmi Party government of failing to protect the very integrity of examinations. The BJP has also targeted the CJP founder, Abhijit Deepke, asking him to stand with Punjab students after he condemned the paper leak but stopped short of demanding resignations. Earlier, when questioned about the Punjab paper leak, CJP founder Abhijit Deepke condemned the irregularities but remained silent when asked whether he would demand the resignation of Punjab's Aam Aadmi Party ministers. However, Punjab Chief Minister Bhagwan Mann has rejected the allegations of paper leaks, insisting that there has been no paper leak in the state. In fact, Punjab Education Minister Harjot Bains also defended himself, saying action had been taken against those caught cheating and even offered to resign if it could improve the education system.
4: Now they are saying that achha, Punjab mein bhi ek paper leak hua hai. First thing, pharmacy paper leak was not a paper leak, it was cheating. जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनको मौके पर पकड़ लिया है. दूसरा ये है कि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट. थर्ड चीज ये है जी कि पूरे देश के विचों बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया. आई एम वाज द ओनली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर हु वेंट देयर. मैं स्टेज से नहीं गया, मैं बच्चों के विच रह के सारा दिन है ना, तो शाम को जो बच्चे वायलेंस रिजॉर्ट करने लगे उन्होंने कहा नहीं अपने दोस्तों कि आप इस मूवमेंट को खत्म नहीं करना, आप इस मूवमेंट को जीना है. तो दो तीन दिन पहला मैंने पूछा, मैं हमेशा कहा कि अगर अगर मेरे रेजिग्नेशन नाल एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है एनी टाइम है ना, आई आई स्टिल स्टैंड ऑन माई वर्ड्स.
5: साढ़े चार साल हो गए सरकार बनी नू, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच. दो जगह तो सानू चीटिंग दी रिपोर्ट आई सी, डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नू स्कैन करके बाहर भेज रहे सी. 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करदे सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वह भी फड़े, उन्होंने कार्रवाई पुलिस की हुई. तो जिहड़े बाहरों उन्होंने पेपर करवाउंदे सी जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, जिहड़े 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया लेंदे सीगे एक पेपर का, उन्होंने भी फड़िया तो फट के उन्होंने जेल च किया. 21 बंदे टोटल फड़े ने तो फट के जेल च किए. मैं ये गल कहनी चाहूँगा, पंजाब दे विच नो कैश नो फरमैश ओनली मैरिट, सिर्फ मैरिट के आधार पर असं नौकरियां भी मैरिट के आधार पर दें.
6: आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, अनक्राउंड किंग ऑफ पंजाब, जिन्होंने फार्मेसी का पेपर लीक कराने के बावजूद हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं मंगया, जदों कि मनीष सिसोदिया जी कहिंदे सी साडे पेपर लीक होते पहला मंत्री का इस्तीफा लवेंगे. हुण जदों कल भी और परसों भी अभिजीत दीपके नूं पुछा गया, उन्होंने मीडिया के अंदर जवाब दिंदिया कहा कि पंजाब के मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए. यही असली चेहरा आया आम आदमी पार्टी की बेईमान लुटेरिया की पार्टी का. अज जदों अपनी बारी आई है हरजोत बैंस ने इस्तीफा लैण की, तो बिल्ला च जाके लुक गए ने.
7: बेहद खुशी की गल है कि हिंदुस्तान के नौजवानों की अज पहली वड्डी जित हुई है. हुण पंजाब की भी यही लड़ाई है, 4 साल च 4 पेपर लीक, और पंजाब दे नौजवान और पंजाब दे लोग इस गुंगी बैरी सरकार तो जवाब मांगते हैं, और जिम्मेदार भगवंत मान ते एजुकेशन मिनिस्टर है, और सानू हुण ये लड़ाई लड़के पंजाब दे अंदर भी एजुकेशन मिनिस्टर दा इस्तीफा लेना चाहिए.
8: आखिरकार देर आए दुरुस्त आए ते सिक्ख्या मंत्री ने अपना अहुदा छड्ड दिता. पर हुण सवाल यह खड़ा हुंदा है कि जिहड़े पंजाब दे साडे लीडर ने, चाहे भगवंत मान ने, चाहे आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, यह दिल्ली दे धरने नूं तां इन्हां ने पूर्ण समर्थन दिता. तां मैं अज पुछना चाहुंदा कि पंजाब दे अंदर 2022 तों पिछले 4 साल च 6 पेपर लीक होए ने, जिहदे नाल 5 लाख विद्यार्थी पंजाब दा अफेक्टेड है, ते की अज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ते भगवंत मान पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री तो इस्तीफा लैणगे?
9: पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे?
10: उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए।
11: आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं आप उनसे पूछोगे?
10: बिल्कुल पूछेंगे।
9: रिजाइन मांगोगे?
11: आप उनसे रिजाइन मांगोगे?
1: The Cockroach Janata Party's 36-day protest at Jantar Mantar finally ended, and after intense negotiations, the government accepted key demands. All eyes will now turn to the parliament. On Monday, that is the 27th of July, the government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. Take a look at this news report as to how it plans on proceeding forward in the very house.
12: Scorching heat, immense humidity, use of force, anti-air gas by security forces. They endured it for 36 days, but continued their protest and remained firm on their demand. As a result, Dharmendra Pradhan had to step down from his position of Education Minister. Prahlad Joshi has taken charge as the new Education Minister. Now, all the demands of CJP have been accepted, including withdrawal of FIRs against protesters and compensation for families of students who died by suicide linked to exam controversies.

0: जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बच्चों के पेपर सेल होने लग गए थे, लीक कर दिए जाते थे, पेपर बेच दिए जाते थे और उसके खिलाफ देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पे आए और आज मैं समझता हूं हमारे लाखों बच्चों की जीत हुई है और देश का अहंकारी राजा का अहंकार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। आज के बाद यही बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही देश का जुबा जब किसी भी स्टेट की इलेक्शन आए या नेशनल इलेक्शन आए तब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी देंगे वोट की जरिए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बच्चों के पेपर सेल होने लग गए थे, लीक कर दिए जाते थे, पेपर बेच दिए जाते थे और उसके खिलाफ देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पे आए और आज मैं समझता हूं हमारे लाखों बच्चों की जीत हुई है और देश का अहंकारी राजा का अहंकार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। आज के बाद यही बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही देश का जुबा जब किसी भी स्टेट की इलेक्शन आए या नेशनल इलेक्शन आए तब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी देंगे वोट की जरिए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.